0: ये बाबर लव्स चेपी
1: रंग जो रेतु रंग एवरीगे लिंग टूइस किरण ये पुमिनी के ना याजी ने मार बे
0: ना तो जो ठग मार से जो अरे पेपर ना लो नीचे लो यूगी ना सोले सुना ये कांगो निंग सोन्यू कांगो साबे चिंग्यू को बादे नी तुन्दे देशो से
1: युक्षो रंगे ना रोज यागे ये रोज ता चिंग्मे ता दिले रांसु सो तुन्दा याहु चे जुम्ना तके जीवा
2: Ola, jema ne mingyu lega chi ne, kira nye de pi, xela xua tup deo si.
1: Yunga.
0: De yung je xiao shi ro ra che, gub gub le kye cha, jok zi xe ro chi, suwa le chung ta ti ri, nar de ma du.
2: De si, din de xene yao chung ba.
1: Xe na nga, le mi cha ro, jing mi.
2: Ma ri.
1: 你这是哪？你也关注了，天上金大事，俺妈亲戚，天上黎明是了不？俺母亲呢？金大是吧？金大了。今天天上给你拉进哪股的？金大了是了的。金大了。马里小生，哥哥弟大团结，你让了也不是闲言语。你干啥事了？让给大官的是上海的这些事的哦。
0: 地名我卡啥对吧？马三伯，马三伯是吧？用不的是名吧？大官的是米勒卡拉书记，小区书记的就这。胡大姐我多啊，我忙着啥子，同大人就住不多啊。嗯，起码到顶这是单位呢，名誉给上了，也不中几个大。爸爸，我，你这马去了，爸爸。
1: 小时了，同居前的可把用着，你不么多啊？
2: 给么多，给么多，给么多，给么多。
1: 小时写吧，也要嘛的，你写你人个字。是。嗯。哦，让雨到底，让你和他说些，你让写下雨。
0: 是的。
1: 让了命运能行，我的。 国内人呢，丽丽的住着不呀？胡大媳妇，已经胡大起了，让给爸爸看不惯是我亲妹，让了我妈姑子，让给丽丽做吃羊肚皮呢，爸爸我说这不是，第。 苏三给爸爸我说这一会儿的，全部因着这个这个情况的，让给我是忙着追学啊，是吧？
2: 嗯。哦，你猜对吧？你自己，我清楚。